लगी लॉकडाउन उठ उठ सख्त हो गया। मैं आपसे नीला उठ चाहो कि मैं उन्होंने बुक में पीवल लिया है पियन एक पटा सिला ले गया। मैं आप लोगों ने तमाने की बल लंग में अम्मा के चंग में उन्हें चंग ना तमालो तलो तुम ना सुलाओ मिगिच्छे तो सायक समें।